आं भाग्या प्रसन्न हंगे फायदे पुला नो तीन नो साल नो जो तुम कहम ग्रंग ठंग टंग होने जाए कक सारे माता ने रोबी रसा पुंग विशिंग तीन नो बंधनो चेंगे लाइन

0: 내가 최신호 아니야 만약에 어머니 괜찮던 거 그때 괜찮대 아버 함자도 있나 이번호 오록 많이 걸려야 돼 아버 하이탄니 아버 하이
1: Dan IPD ka ham kita thang do ham mai mele kena ham bai ani kamong ni dog book song ang tini chana nai man kamong hasi taung ni ojara o jeng je phungai khen keno je chini hamia je tongi tong lai mani hamia tomong je chini sengcharo chini somajo chini dopho aske kreng mani chung nukha aba tam phani chachi nai actually salai kange kaung na kok tongo salai kange kaung ma kok no chung muito mano nang le tam hne kok ka sana musung ta ke kok tu nai ne ga phong ka ham
2: I jara ka ham dara ani mo angel ang to mo rai na
1: da da sari
2: engke ja to barana kol ताकि तो कॉल खाली करने में सामने जा रहा है तो नंगो तो इन औरों दुमोनी तो तो कॉल खाली ना ले तो कॉल हाथी ले माया माने ऑनलाइन इसके तो नहीं हो क्या अपने बागे तो वो वाइस वो चीज कॉल हाथ बता रहा कॉल तो खाली में नंगा रहा तो
1: अब है या वो कॉल हाथी अब है या क्या उपन कॉल रुक साइट उपरोंग
2: ने हामेन ने हामिया रो मिसिंगि थामने सिबला हे दना न आदि दबा आबो खितो माने जानजान इ वान सिक्स मा खरसे बरो खामिया थाबो निसि कु कि मनो के मातंग ना हे दिबा ब जित थापन बसे थामने बा हे दा एंके ते गसे जेलिर बिदु खाने रो किया आब्रो मिगे तो माने बरो माने आबो हाय बरो बोंनि फाजिंति बतारा दो माने बर गेसे हामिया खलाय मानो माने बर गासनो हामजागो बथे लाखिसागो हाबन बर गे तंग तंगागो दो आबो बर लाखिबि तंग जे बर आबो हाय खलाया ताव कुबामा बर न आबो हाय आबो जानते नि वान सुमन दारा हे दिबा के हाबन आं इसन कक सगिन दारा कोरो ब थान ना जिया
1: दा दा दा
2: आं किमि छौ जा बाहाय जाने बुने ब जरा मारि ने
1: बता दा हां भाई ए आबो नो अनि खाबो नि डाक्टर बुक सङ सङ टेस्रा सोलो हंगके नो जिनि हायनि खरांग पान्दा हबलाय ने आबो नो लंग हाय हेन मै कक सालानि वगै फाइने अनि खाबो नि डाक्टर बुक सङ खाखले न जतन का हम करंग तंगना हनै ते का हम करंग बिसिं थिन सङ बस कमाय हिम लाय ने आं कक गुति सालिया जरा क्रिन बागै हायनि खरांग पान्दा पाइ मानि आगुलो नंग मै हायन हे आं कक सालाय पिने जतन का हम करंग दं दि काम करंग तंगमान बिसिंते जों बाहेके काम करंग के तंगिमान लाय आबुन नाय नै केमनि का हाम हामिया सालाय नै केमनि का हाम न जों वानसु के ओइ नै हामियाना जों सालाय ओइ काम करंग न सानान बगे जों वानसु लाय नै गे फाइदिं के जों हायनि खरंग पान्दो हाबलाय नै

0: सुया को नजानाई हम बगे सावन दुई मखंग सुखा के नीनी मखंग राम रायथंगो तेई तेबो बरन बारी मानो जो बक्स बक्स नायो नुगो मखंग बरन खाके जो आबनो यासको खेरेगो तेई चेयरमांग टंगो आबाई खाके नीनी अ बरन तेबो कबांगो के बारी कूबनाय आन बगे जो अबरनो आसेक याग बै टांगे खेनगो जो आबन कारीब मस्टराइजर गनां सबान मा फुलनाय नीनी स्किन टुम आंद्राई थे अल अलिव अएल बहाय अर खामगे फुली मानो तई जो गम तीन नाई तई डाइट खाने नाई गबां मैखिंग टिक्रिंग जान नाई तई गबां कुखे जो जे मानसा फल फकार जानके निबागे बेलेखनो जाना जो निनी स्किन टुम बेलैन अएलिंग खाके नजाग निनी फेस वाश मा खाने आबंका सालिक एसिडनी दंग आबो निबागे बेलेखनो गाहम आबन कारीब टी ट्री अएल आबहा नूज खालामनो तई बेन्जल पेरक्साइड आबहा नंग और यूज खालामनो आबन कारीब निनी कपाल खुंजु बुकु आबो हर बहनो जे अएलिंग टमानी आजागो हाइन गाहम के नंग जे फेस वाश गाहम रो यूज मा खालामनाय आबन कारीब नंग और तुम निनी तेबो गाहम के टनांग के डॉक्टर वाई थांगै नायजाग मानो नायजागिनाय नंग करक्सा गाहम डॉक्टर वाई कक सालायगे निनी अ बरन हामै थानाय दै जों गोबांखौ के थुमार गहायनो गाहम के नायखांके न गाहम जानाय दै नों फाथाराव गहांके मस्टराइजार सानस्क्रिन आबो हाइरक नों मा फुलनाय दै अएल फ्रि आबो हाइर मा फुलनाय नों तुमुं नगनि कुनु सामगं याहांगांके नों अमो हाइरं खांके डक्टर बाय थांगि डायरेक्ट सिराक मालायदि दै स्किन डक्टर बाय मालायनाय नों कक सालायगे निनी अ बरन हमरी मानाय आग्रा जों सा खामप्लाइनखौ गिसा दिनै सिरकनो बरन नंमानाथै ककथायथिनि खोनालायखा
1: आव हाइकेताव सों दिनैनि ककथुम खोनानानै फाजिं थांलायना दिनैनि ककथुम पुलावनो आनि याफाव दङ लुकुरगनि बिसिंग तं गोजां दाय बेबजारिनो मोथांगै तन्ना बागै खुवाय महकुमानि भारत बांग्लादेश आरि आमचायनि बारा मिटार आमचायो हरनि दाम चारनि सिमि तानि फुंनि दाम बा जरा लुकुरकनि थांलाय सुथानि बो गिसा माना बक्सिन मुं बक्सिन जाखा अ बक्सिन मुं एबा माना ख्लाय मुं बोसखां जुलाइ तालनि नैजि स्नि सालमारि जरा टंगानो होनैबो साख्लायजाखा गे अ साख्लायजाक सालमारिनि बिसिंग तमुंन रायदा सोबायै थांलाय सुरख्लाय दंखांके बरकनि साखाव ग्राक माजरा रोजाखनाय होनैबो साख्लायजाखा हास्ते पुलिस बाहिनि तै आदा सामरिक बाहिनि तै अ सामुंनि डिउटिअ गोदालजाक आमहाय बरक नकारै तै साखामिया नखुंनि बरक नांकुकमानि बिथि बिरायरक पायना नखमानि बरक खायनो कारैनै तै जत लुकुरकनि साखाव अ माना बक्सिन तंजा तंगानो होनि ब साख्लाय जाखा
0: फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियान हेटिपुरानि बिभागटै प्रजेक्ट फर सास्टेनेबल केसमेन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट इन त्रिपुरा अजागो कैसा पान्डा खालायजोंनाय दिनै फरेस्ट इन्टिग्रेटेड जिउ फेस्टिकेल सल्युसन FIGS अर मानजाखनाय बलं मन्त्री अनिमेष देव बर्मा दै मानजानाय रविन्द्र कुमार सेमल IFS प्रिन्सिपाल सेक्रेटारी फरेस्ट गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा अबका प्रोजेक्ट फर सुइटेबल केसमेन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट इन त्रिपुरा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट तिनिबो प्रग्रा भवनाव अपान्दांनाय जतन अर फाइ मानजाना बगैनाय कय जागौ

0: पहिला युनाइटेड स्टेट सेलिब्रेट खालामनि डेकोरेसन डे आउ मेमोरियल डे नेशनल वाइट फलेन सोल्जारक न अब बरन्दमानि साल 1911 इन्डिया पुलिस 500 अटुरेस दिन सालो जेंमानि साल आजागाव गोप्लाइंखा रे हरियन ब रियार भिउ मिरर अब्दि डे होनै बन जों जतन पालायलाय आसुक जरा जों हायं हाखत्र पाटिमुर जों सैमा लायखा जों दाबुक हायन खरां पान्द
1: आव इनके रिचा मुंखनानानि फाजिं थांलायनो रिचा मुंखनानि सिगां दिनै नबरदिबनि सिगां बारे कक्तमा किसा खनायनालायनो नबरदिबनि सिगां बारे कक्तमाव साख्लाय जाखा दिनै नखा किसा जमुई कबल जाग दंनाय तै फेरांगकगुइ वाते वाइफ हनुमान हनी पो हजाक तंगना बागे साकलाय जाखा दिनिनि तुंमानि साकानि फाजिं तंगानो थामसि बा पॉइंट बा डिग्री सेल्सियस ताय खामाव नैजि बा पॉइंट थाम डिग्री सेल्सियसनि गानागिनि तंगान होननाय साकलाय जाखा ताय नवरतै हकुनि मारि कुचुगयां रावरा ताय खामाव दक्षिणै पार्सेंट तंगान होननाय साकलाय जाखा गासक जरा खाना बायखा दिनिनि नवरदिबनि सिगां बारिया कक्तमा ओमफ्राय दिनैनि हायनि खरां पान्दा न' कम थेंका आं तनुजा
0: आं प्रसान्त
1: ताय नरक जतनि बागै दिनैनि फुंगोजां जराव अरजाबमुं प्रमिला देव बर्मानि खरांगौ

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: सेंटर आस्क्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू बिल्ड 30 डेज एलपीजी रिजर्व्स एज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शोज मेजर गेन्स इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rain, fall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong. Clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing company

जिनि एफ एम पान्डानि बिसिंथै खोनालायानो पुइला कक्लब कक्लब नि मुं ओंखा हसियार सैनाय ओंखा अर्जिन देपर्मा सतै बमुल परखा बखा नोंबा तामो ओंखा लिलाकना कलाय बलंनि वालाय तंगै चावै तांगैबा नों बयनि बागै जोंबायबा वालाय ककले थाकलाया सामुले नगिया किचिक बियां सुचि बियां दफानो तयै नरगव तामो उंलायलां हाफार दुला सारमा नुग्यादे दायकुंनि

नंग बामो अंखा लीलगना कलाई बोलोंनी वालाई तंगई तंग तंगई चावई तंगई बा न बुनी बागई जंगबाय बा वालाई कोगले थाकलाया सामुंगले नुग्या किचिक बियांग सुचि बियांग दफानो तयै नरगवतामो उंलाइलांग हाफार दुला सारमा नुग्यादे दायकुंनि कुवा तैकरै नुग्यादे जाब्रा मरानजाक मुसुक से चाया आबुनो दे नों जोंनो बेदक सलाइमु नांनाय दफानि बागै बसं कमर लांथुं थाप्ला जावै मुक्चिलि किनारतै मुक्तै यरिमा मागनाता थांथुं हकतै जावै गोलांजाक मुकुमु फन्दुक फन्दुक अबो आहायनदा फनखना सातुं गोरै वातै नांगिया सिन्जो माहानिया सोन्दोगो दाजाग्रक नकनि अकरा दफानि जाकरा होनै सुरानि याफारका नन अ सोन्दोगनि आहाय हिनिदा नों जोंनो मकल थाफला मकल खापुंगै थकाय थकायै बेबाग मुकुमु फालै जानाय बुमुक पेरसाजा गोताल बसं दरुग दरुग दारक दङ हसियार नरक हसियार आव बेलेखेनो कक मरक एबा खेबा बेलेखेनो कक कुतुक बाख्याय बिसिंनि कक बख्रि बेखलजाक कक रकब ताखुक अर्जिननि सैजाक अ कक लब बेलेखेनो खनातखातेय बिनि अर गोबांमा हुइजाक कक थाय रक दङ ब चिनि सैकरों रक हिन्दी जेसा दफानि फान हिन्दी जेसा बसंनि फान हिन्दी चिनि सैकरों बा दफा हदानि सैकरों रंनि बिसिं तैसे बर' रग्न खा बाजारिउ एबा खेबा सिजारिउ आव बरंनि सैकंनि बोतैबायसे गोबांमा खा नांगिया र' खा नांगै बंनि फान जुदाङै माथाङ अ सैमं रग्न नुगै एबा मापरिवै आव बिनि बोखा मुंसासक चर हाबजाक दंना बा मुंसासकनो तै बोखात व दुनगजाक ओंखाना आबनि बागै आसोखाय अमहाय कक कुतुक बाय सैका बेलेखेनो हामबाय ताखुक अरजिनो निनि अ ककलबनि बागै निनि अ ककलब सैमुं सैजाक दंमानि बागैनो आं दिनै ताखुक ते बुहुक संनो खोनाय दंनाय रंनो खोनारि उमानखा हेंखाय तरुक तरुकखाय सोङो बाहायखेनो ककलब खोनालायानो हायनो हाय दाबुक ते तांसा खोनाबानो आबंखा ताखुक चातुदेव बर्मानि सैजाक आं साबु आबब तैमुक बिजाबनि न खलजाक गायसा ककलब आं ताबुक नरग्न सावै खेनारिबानो हादुक दुक कलक बासावै दंब नाहारि नुखरिया लुकु कुथुम बासावै दंब सिनिमु नायतुगै माया आं साबो हायुं गोनांगै दाले दाल लामा गोनां मां जतनि तंग सिनिमु गोबां आनले साबो सिनाय तं आं साबो खरकति सावै बासाना नायब उक्लक बुसका

लुकुनि खरां याचाकनाय गोरै मां सामपिले गोरै बरकनि मोखां बखानि मुचुंमा गोबां बाहाय ओंनाय मुखथां ताबुकनि जराव' याक्षिया गोरा लुकु सेगलायमा खरां लुकु गाहामनि बियाल आं साब' आं साब' आं साब' आव चिनि अ कग्ल' ब्रग्नजों हायना वायसा वायनै हायना सुत्रां परि थांमाबाय तामु सैना नायखा तामु साना नायखा जों रमै माया एबा बुजिवै माया आंगौ चिनि कक बायनो सैजाक हायबानो कायसा कायसा कक थायनि गोबांमा मां दं ओ कक थायनि मांखे तामु ओंखोना जों आब' वायसा खोनामाबाय जों रमै माया खोना रमै मानो फियाबा सिरिं सिरिं खायो बनो सिमिन' बोखारिवै खोनाय दं दंमांखा हांगे मुकुमै यां यां कुनु नुगियाखायो आफ्रु खाखायो अ कक थायरंनि मांनो जों बुजि मानलायानो होनै फियाबा जे वायसा खोनागोन मानिया अबाहाय कगिया फियाबा आं दिनि जे कक्लब कक माने कक्लब रक्तुखा आबो गोबां कुनु खिसे खा नांजाखनाय वानसुक जाखनाय जिनि थैबाय गोरोंजाक जिनि बाहानबो थै जिनि हाबाय गोरोंजाक कक्लब ककटां रक हायनि बागैनो जेमन चिनि भारत हाकतर यगलानि फुर गोबांमा सैग्रोन रक सैलायखा आफ्रनो सैमुं नंखरखा यग साना मुजुंमानि बाय गोबांमा सैमुंनि बिसिं दैब्रक सैमुंनि जबाव नंखरखा हिंखे ओङै मानो चिनि दाबुंनि जे सैग्रोन गोता लक बरक बखरक तैसाय बासानानि बागै जबा ख्लाय दङ बा सिनिमुं माननानि बागै जबा ख्लाय दंमानि बागै बंनि जबानो अ सैमुंनि बिसिं दैखाय नायथाथखाय कक थाय बोतां बोतांखाय सै तनिखा एबा सै फनुका गे फायदि कक गोबां दं आसा सानानि थांलैया जों अबाहायखायनो कक्लब तांसा साव' तांसा रोसा मुंखोनाव अबाहायखे जों जोंनि बान्दानो बोसखाङो ग्लांलायानो गे फायदि अजाराव दे तांसा रोसा मुंखोनायनायलायानो अ रोसा मुं खोनामानि आगोल' हायनोहाय जों दैसा गिफिलि फायफियानो नरकनि कक्लाब रक तुबै फायजां नरकनि बागै आ कक्लाब रकनो खोनानायनि बागै गे दाबुक जों खोनानाय बुखुक पारमिता तै दाखुक आरपननि खरां बायदि साबजाक अरजाबुंनो खोनाय दंनि बाल बक्साखे जतन अरजाबुंनो

0: சாபம் பாண்டா
1: சொல்லிச்சோம்னா ஏ ஏ இது சாபம் பாண்டா
0: அது சாபம் இந்த டாக்கினன் கிரவன
1: தசாதே
0: ஏ தில் லகி டாக்கினி தோ
1: ஏ தில் லகி
0: ஏ யாரோ நீ சாபம் கொப்பைங்கே ஃபோட்டோ பேப்பர் தேரா நாம ஹே நீ சாபம் சாபம்
1: ஃபோட்டோ பேப்பர்ஸ்
0: ஃபோட்டோ பேப்பர் தேரா நாம ஹே நீ
1: ஃபோட்டோ சினா அச்சா அச்சா
0: ஓகே
1: আম তো হিনি নালে চাবায়ো সিদ আং গোসাই আব তাব থাকি মালকে সাই মানছি নাই গা হামবাই দিব কাহাম তাক ন হিংকে ভাইদি হ জরাব জং ককদুগো থাংলাইগ্রালিয়া আশেক সাল কদক মা সুরি মা উল অর চামুন জং খনালাই নাগানা অব জিনে তাকুক ব্রিজেশ কয়হরমানি খনালাই ন ভাইদি পালবাকসা যতন অর চামুন হিংকে ত্রেক ত্রেকে হাইনি হাই হেনংনি ককদুক বখাগো থাংলাই ককটুক তাবুক নরক ককটুক ফাইফ আং রমি মাংলাক তাবনি হিমালে তারপর রসা মঙ্গ থাকলাই বলা হিগে খালে অরসা মঙ্গ

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

लोकरक खातुंगई भोटार मंगरेमो मुंतिसाका राजानि बिसिंतै गथै आमसाय तंगया कुबुनि थायो थांजाकताय बुइहा भोटारकनि मुं बाद्रजाखा केन्द्र हुबाटाय हुबार खलायनाय हामक्राय तै कामि हामक्रायनि साकथारमाबाय बोसकां जुन तालनि पुइला सालनि सिमि हाक्तर गनांगै खेतबासाव तांबोतां सेंगानो असामुंबोतांनि तियार उमुंनो चेरिनायनि बागै दिनि केन्द्र मन्त्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली कोताल कुसुक बेरेमनि कक्सा पान्दा खलायखिया पान्दाव बसाखा असामुंबोतांनि नाहार मुंखा काहाम बिथिब्राय तै नबार तैबारनि देरामुंगो हुबार खलायनाय रक्न कक बिथि रोनानि पंचायत बेरामो सामुं तांनानि तै हाफांनि वानसक तांरकनि सेबसाब कामि आमसायो तुनै रोनानि आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अकक्तमा खोनायथंबायो आकाशवाणीनि कक्तमानि आपडेट माना बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एयर एप तै टुइटार बाय फेसबुक प्लेटफर्म एट AIR न्यूज एलार्टस यूट्यूब नायदि न्यूज अन एयर अफिसियल आबुनो कारिब आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तमा आपडेट मानाखे टुइटार एबा एक्स हेन्डेल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक AIR न्यूज आगरतला तै यूट्यूब आकाशवाणीनि न्यूज आगरतलाव नायना नांगानो मन्त्री पख्रं नरेन्द्र मोदी खना ककति सालनि फुंदामसि साव आकाशवाणीनि मन की बात पान्दानि बिसिंतै हाक्तर तै बुइहा हाक्तरनि लुकुरक बाय ककलाम सालायनो अमेल आकाशवाणी तै दूरदर्शननि जत नेटवर्क आकाशवाणीनि ककतमा वेबसाइट www.newsonair.com तै न्यूज अन एयर मोबाइल एप अ खनाय मानमानो अ पान्दा आकाशवाणी डिडि न्यूज मन्त्री पख्रंनि नायखुं एबा ककथुम तै आवयमुं नायखुंनि युट्यूब चेनेल खनाय मानानो अ पान्दा आमचायनि कक बाय हरनि दामचार जराव तैसा खनाय मानबाय फिरानो केन्द्र हाफां एमजिएन रेगा तांगो तांगो ताक्लाय बिसिनि एप्रिल तै मे तालनि बागै हास्तेव साल चार्चि रासाय तांसामुंनि साल तै तांसामुंनि रां खक स्नि सिनै रोजाक चार्चि चुकु रासाय रांनि गसिमुं रोखा अ तांगो तांगो थांनाय रां बिसिव हास्तेव बेबागै साल नै रोजाक दक्सिनै रासायनि गोबां तांसामुंनि साल सोनामजाखा आबोनि बागै रां बायख्या खक चुकुरा थामसि रोजाक रां एमजिएन रेगा तांगो तांगो थांनाय रां बिसिव हास्तेव तांसामुं तांनायरक साल ब्रैसिबा तांसामुंनि सेबमानखा आरो बसं तांसामुंनि साल तंमनि साल ब्रैसि थाम खुरसाथाय क्लायो जुलाइ पुइला सालमारिनि सिमि हाक्तर बाय बाक्सा हास्तेव विकसित भारत कर्मसंस्थान तै जीविका ग्यारेन्टी मिशन एबा बिबिजि रामजी केरंग्र नै साय नैसिबा सामुंग फोनांजागोनो अ केरंनि बिसिं कामिनि नुखुंरग्न बेबाग रां बिसिनि साल सारा नैसिबानि तांसामुं मानथग्रोना सेबरवानो कामि हामक्राय नायखुंनि बखाक्तै अकक्तमानो साजाखा स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह हास्ते बेरामायाव फाइमानो फाइमानथक तांहालग्नो रोगै तिनि खुवाय हांकर नायकलफां रजत पन्तनि दैदुलमुं बाय हांकर नायकलफां हाबानक ग कक्लाम सालायमा संजाजाखा कक्लाम सालायमायाव प्राणवन्त ग्राम सामुं तांनो तैयै सुबाय सिक्रुबै कक्लाम ओंखा आरि आमचायनि लामा तांबेख्रेब हामक्राय बेरायखिरि दाल बिदाल बाबायनो तैयै हांकर नायकलफां जुदा जुदा लाइन डिपार्टमेन्ट तै भारत आरि मुंगै मोरगनाय बाहिनिनि थानि ककथुम नाहारो यागबारा हांकर नायकलफां अबेदानन्द बैद्य भारतनि आरि मोरगनाय बाहिनिनि सारा ब्रै तै स्नि बेटेलियननि नायकलफां संन खबै जुदा जुदा नायखुंनि अफिसार कक्लाम सालायमायाव मान्जाखा खुरसाथाय क्लायो केन्द्रनि स्वराष्ट्र मन्त्री अमित शाह बुसकां तालनि बा सालमारिव हास्तेव बेरायनो फायोनो होनै ककतुमा उदयपुरनि गुमती हांकर पलिटेक्निक रिंन कटनि कम्प्लेक्सक कोताल केन्द्रीय विद्यालय खुलकनाथ दागिमुं साख्लायखिया केन्द्रनि रों मथा नैसाय नैसिदक नैसिस्नि रों बिसिनि सिमि अ रोंनग रोंनि सेब जेंगानो पैला बोखाग रोंनग रेमसानि सिमि रेमबा जरा रोंनि सेब रोजागानो बेबाग रेमो सेक्सन कायसा तंगानो बोसकां तालसानि बिसिं सोरोंनाय रगनि बरतिनि सामुं पायरिना दागिमुं रोजाखा खुरसाथाय क्लायो नैसाय नैजिब्रै बिसिनि डिसेम्बर तालो भारत हाफां हाक्तर गोनाङै खुंसारसिबा कोताल केन्द्रीय विद्यालय गसिमुं रोमानि अब आबुनिनो कायसा बोखाग
সিপাহীজলা জেলা পরিষদ নিয়ে কাজকুজুক সুপ্রিয়া দাস দত্ত তিনি কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে দক্ষিণ মধুপুর সিপাহীজলা হাঙ্কর বেড়ে গড়িয়া তেরন চেঙ্গিরেখা

0: Babe, we're going to be going back to the surprise trip.
1: बिग बोल सेल पे सब है ऑर्डर करो सेम

0: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश

0: में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि

0: रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित